परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 855-397-0301 तुहाडे अपने होस्ट दे दोस्त दर्शन सिंह खट्टर दे नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम दिल दी आवाज परवाज रेडियो दे उत्ते

और अलग तरह का घोल है जो इसके बीच रहने वाला जो लिक्विड है वो बनाता है। तो इस तरह ये पूरे का पूरा मेम्ब्रेन एक दीवार की तरह काम कर रहा है, लेकिन इस दीवार की डिफरेंसेस, इस दीवार का दूसरी दीवारों से फर्क क्या है। दूसरी दीवारों में तो किले की दीवार होती है तो उसमें दरवाजे होते हैं ना, दरवाजे से ही हम अंदर जा पाते हैं, दरवाजे से ही बाहर आ पाते हैं। लेकिन ये इस तरह का किला है जिस तरह आप अंडा देखते हो ना, तो अंडे को आप देखो तो चार फ्रिज, उसका अंदर का घोल है वो बाहर तो आ ही नहीं रहा है, और अगर बाहर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है दीवार पूरी बंद है। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि अंदर से बाहर कुछ जाता है तभी अंडा बड़ा होता है, बाहर से कुछ अंदर जाता है तभी अंडा बड़ा होता है। तो ये सब चीजें इस तरह होती हैं। आम अंडे में भी जब मुर्गी के अंदर अंडा रहता है तो भी, या हमारे शरीर के सेल में भी ये जो क्रिया होती है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाने की, किसी भी पदार्थ की किसी भी चीज को, उसको हम परमीएबिलिटी बोलते थे। और परमीएबिलिटी के बारे में मैंने आप सब लोगों को बताया था कि ये प्रेशर से काम करती है। प्रेशर से जो उसकी दीवार बन चुकी है, वैसे तो वो सुकड़ी होती है, उसमें से कुछ ऐसा नहीं निकलता। मान लीजिए एक टायर में कोई किल लग जाता है ना, किसी गाड़ी के टायर में एक किल लग जाता है, और किल जैसे प्रेशर बढ़ता है तो वहां से बाहर निकलेगी हवा, और अगर वो किल बाहर निकाल दिया जाए तो एक लिमिट पर आकर वो प्रेशर रुक जाएगा कि थोड़ी हवा निकली, उसके बाद वो हवा जो टायर में है वो उतनी रुक जाएगी, क्योंकि तब तक इतना प्रेशर अंदर नहीं रहा कि वो उस सुराख को जहां पर कील लगा हुआ था उसको डायलेट करके तो हवा बाहर निकल सके। तो इसी तरह की इस चीज को भी हम परमीएबिलिटी बोलते हैं। दूसरी बात मैंने इसमें एग्जांपल दी थी कि हम छाछ छानते हैं ना, दूध से बनी हुई, दही से बनी हुई छाछ जो होती निकलती है, और उसको छानते हैं तो जैसे ही हम ज्यादा प्रेशर देते हैं उससे और लिक्विड निकलता है। पहले तो हम कपड़े से छानते थे ना, आजकल तो अलग अलग तरीकाकार आ गए हैं, लेकिन उस वक्त हम कपड़े से इसको छानते थे तो कपड़े को जैसा ही आप प्रेशर देते थे उसी तरह ही इसमें वो प्रेशर के साथ वो जो धागे हैं कपड़े के, उस वैसे तो आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जब भी आप उसको प्रेशर डालोगे तो धागों के अंदर जो जगह बनेगी उससे लिक्विड बाहर निकलेगा। यही प्रोसेस जो है वो सेल के अंदर घटित होता है, और इस सेल के अंदर घटित होने वाले प्रोसेस का नाम है हमारा के परमीएबिलिटी। इस परमीएबिलिटी की वजह से ही सेल बढ़ता है, सेल कम होता है, छोटा होता है। ये ऐसे कहें कि हम लोग खुराक खाते हैं, हम लोग जब खुराक खाते हैं तो खुराक हमारी हजम होकर आंतड़ियों से खून में शामिल होती है। उसका प्रोसेस मैंने आप सब लोगों को बताया है कि कैसे हम खुराक खाते हैं और उसमें से कैसे वो आंतड़ियों से हजम होकर और फिर खून में कैसे मिलती है। वैसे ये पूरा एक प्रोसेस था, एक सिस्टम था जो मैंने कई बार इसमें लेक्चर किए, आगे आने वाले समय में फिर दोबारा ये हम बताएंगे, लेकिन अभी इतना जान लें क्योंकि हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं, और वो प्रेशर से खून में रच गया। जितना जितना भी एक्सट्रैक्ट उसका निकला, हमारी खुराक का हमने क्या खाया कैसे खाया, उसमें जितना भी एक्सट्रैक्ट चाहिए हमें खून में मिलने के लिए, चाहिए इस शरीर को और बड़ा तमीर करने के लिए, या इसकी जो टूटन हो रही है, टूटबाज हो रही है, उसको रिकवर करने के लिए जो चीज हमें चाहिए वो तत्व इस खुराक से निचड़ कर खून में शामिल होता है। और जब ये खून में शामिल होता है तो फिर ये अलग अलग जगहों पर खून के जरिए डिस्ट्रीब्यूट होता है, और डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, हमारे जो आर्टरीज हैं इसमें प्रेशर बढ़ता है, इसमें टेंशन बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है तो इसकी वजह से सेलों के अंदर ये खुराक पहुंच जाती है। सेल के अंदर प्रेशर कम है, बाहर का प्रेशर खुराक खाने के बाद बढ़ जाता है, वो अंदर चला जाता है। जैसे ही एक से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे सेल, तीसरे से आगे के ट्रिलियन सेल हैं हमारी बॉडी में, और ट्रिलियन सेल में ही ये क्रिया उसी वक्त होनी शुरू हो जाती है, इन ए मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। और जब उसके बाद सेल जो हैं इसमें से आई हुई खुराक को इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसमें जो बाकी वेस्ट बच जाता है पूरे का पूरा

गई, वेस्ट तो आंतड़ियों ने भी निकाल दिया था, और अब जो उसमें बिल्कुल प्योरीफाइड खुराक थी वो ही निकाली थी। लेकिन जैसे हम लोग दही से मक्खन बनाते हैं तो फिर मक्खन को और प्योरीफाई करते हैं, हीट पर रखकर वो घी बन जाता है। ठीक इसी तरह ही हमने खुराक से बिल्कुल प्योरीफाइड वो मक्खन की तरह निकाला और खून में मिला दिया, और खून के बाद फिर वो सेलों में गया, सेलों में प्योरी उसकी और प्योरिटी जो शामिल हुई उसमें फिर वेस्ट बचता ही है। वो जो वेस्ट बचता है जैसे हमारे मक्खन के ऊपर जो छाछ थोड़ी और आ जाती है फिर उसको निकालते हैं, इसी तरह वो सेल जो है निकालता है। सेल कैसे निकालता है, एक तो खुराक आ रही है, दूसरा उसका गार्बेज बच गया है, अंदर का प्रेशर जो बढ़ जाता है। जब अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है तो उससे ऑटोमेटिकली अंदर से चीजें बाहर जानी शुरू हो जाती। तो इसी तरह वो जाने वाला खून, वापसी खून जिसको हम वेनस सर्कुलेशन बोलते हैं, वेनस सर्कुलेशन में ये वापसी वाला गार्बेज जाना शुरू हो जाता है, फिर वो जगह जगह पहुंचता है। इसी तरह ही जो सही गार्बेज निकलना है, पहले तो मल त्याग से निकल गया या पेशाब से निकल गया, अब जो ऐसे आया है इस तरह का गार्बेज ज्यादातर जो है वो पसीने से या सांस से निकलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह का गार्बेज निकलने का ये तरीका कार था। ये बात हमने मेम्ब्रेन के बारे में बताई थी, और मेम्ब्रेन के बारे में हमने ये बताया था कि मान लिया जाए ये दीवार खराब हो जाए, इस दीवार में सुराख हो जाए, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा कि बाहर से हर एक चीज जबरदस्ती अंदर चली जाएगी। या ऐसे कहें कि कोई ऐसी चीज हमने खा ली जिसकी वजह से अंदर का प्रेशर बढ़ गया, टॉक्सिन हो गया, जहरीला मादा हो गया। जब दवाई खाने के बाद आप महसूस करते हो ना कि लगता है मुझे दवाई फिट नहीं बैठी, एलर्जी सी हो गई है, घबराहट सी हो रही है, इसका मतलब क्या होता है कि उस दवाई में जो चीज आपके शरीर में अंदर जा रही है उसको आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन उसकी वजह से वो खून में शामिल हुई, खून से सेलों में शामिल हुई, सेल उसको निकालना चाहता है, निग्लेक्ट करता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, तभी हम लोग घबराहट महसूस करते हैं। और इसी की वजह से अगर वो प्रेशर से अंदर जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो मेम्ब्रेन में कुछ ना कुछ और सुराख कर दिया उसने, सुराख को ज्यादा कर दिया उसने, जिसकी वजह से ये अंदर जाना शुरू हुआ, फिर वो उसको निकालने की कोशिश करती। मान लिया जाए अब अंदर चले ही गई है, कोई भी चीज जो शरीर को ठीक नहीं लगती वो शरीर के अंदर चले गई है, मतलब क्या हुआ, मेम्ब्रेन डैमेज हो गया। मेम्ब्रेन जब डैमेज हो गया तो उसकी वजह से आम तौर पे सबसे पहले जो शरीर से नुकसान होता है, जैसे मैंने ये कहा था कि अगर मान लीजिए दूसरे देश पर एक कोई किसी देश का हमला हो जाता है तो सबसे पहले उसके बॉर्डर की जो सिक्योरिटी होती है ना उसको, या उसके चारों ओर की जो सिक्योरिटी होती है ना उसको डैमेज किया जाता है। तो हमारी सबसे बड़ी सिक्योरिटी हमारे सेल हैं। सेलों में भी जैसे WBC है, इसके साथ सेल WBC को खुराक कौन पहुंचाता है, WBC को एक्टिव कौन करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ होती है, RBC में होती है, खून के जो लाल कण होते हैं ना ये उसी में होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अटैक कहाँ हुआ कि जैसे भी मिलिट्री में लड़ाई भी होती है ना तो दूसरी दुश्मन फौज उसकी सप्लाई लाइन को काटने की कोशिश करती है, और सप्लाई लाइन काटने का मतलब है उसको डैमेज कर दो। तो सबसे पहले अगर मेम्ब्रेन खराब हो गया या कोई चीज जबरदस्ती या जहरीली किसी भी तरह की चीज जो खा ली है वो सेलों में दाखिल हो रही है, तो उस लिहाज से अंदर का निजाम इस तरह बदलेगा। प्रेशर बढ़ जाए और उसको वापसी में वो निकालने की कोशिश कर रहा है और उसका निकलेगा पसीने की वजह से, तेज तेज सांस लेंगे, ये सब क्रिया होनी शुरू हो जाती है। तो उसके बाद जो एक कंडीशन बन जाती है ना, मेम्ब्रेन खराब होने की जो कंडीशन एक पेशेंट की बन जाती है उसको हम बोलते हैं हेमोलाइटिक एनीमिया। और हेमोलाइटिक एनीमिया जो है
ये साबित करता है कि हेमोग्लोबिन बहुत ज्यादा टूट गया है और अब ऑक्सीजन शरीर की पूरी नहीं हो रही है और इसी की वजह से हमें सांस फूल रहा है, इसी की वजह से हमें घबराहट हो रही है। इसको निकालने के लिए जो सेल है कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से हमें पसीना आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं त्रेली आ रही है। मैंने कोई जहरीली चीज खा ली या दवाई खा ली या फिट नहीं बैठी तो त्रेली आनी शुरू होगी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो सेल उसको निकालने कोशिश कर रहा है कि भाई ये गलत चीज मेरे में आ गई है। और उसके बाद अगर कोई चीज टेम्परेरी तौर पे हमारे शरीर में दाखिल हुई तो उसको हमने बाद में बंद कर दिया तो फिर वो सारा कुछ रिपेयर होना शुरू हो जाता है, नए सेल आने शुरू हो जाते हैं। आप जानते हैं कि जो सेल हैं वो हमारी बड़ी बड़ी जो लंबी बोन है उनमें से बनते हैं और वो हड्डियां फिर उसको बनाना शुरू कर देती हैं। और आपने कई बार देखा होगा कोई जहरीला मादा या कोई बहुत ज्यादा नशा या कोई ऐसा कर लें तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, चलने फिरने में बंदा डोलने शुरू कर देता है, बिगना शुरू कर देता है, गिरता है। तो ये सब चीजें आमतौर पर इस बात की सूचक है कि अब बोन को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है नए सेल बनाने के लिए, क्योंकि बाहर के जो सेल सर्कुलेशन में चल रहे हैं वो डेड हो रहे हैं। तो बारी चीज आ गई है सेलों में, उसकी वजह से वो सेल ज्यादा वहां मर रहे हैं, ज्यादा डेड हो रहे हैं, जरूर से ज्यादा, और बोन्स को सेल बनाने के लिए और मेहनत करनी पड़ रही है। इसीलिए हमारी टांगे लड़खड़ाना शुरू कर देती है, जहर वाली कोई चीज अंदर चली जाए या जो चीज हमें बर्दाश्त नहीं वो चली जाए तो हमारी टांगे जो है लड़खड़ाना शुरू कर देती है। उसका मतलब भी यही है कि बोन को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। अब इस तरह के हालात में अगर हम बाहरी शरीर से देखें, उसका तो मेडिकल नाम तो मैंने आपको बोल दिया कि इसको हम बोलेंगे हेमोलाइटिक एनीमिया। कि भाई खून के लाल कण टूट रहे हैं, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, पर वो जहर तो अंदर है ना, जहर की और क्या निशानियां होगी, बहुत सारा और नुकसान वो करेगा। दुश्मन अगर हमारे घर में आ गया या देश में आ गया और अंदर दाखिल हो गया तो बहुत से और भी नुकसान कर सकता है, और सी चीजों को भी नुकसान करेगा। तो सबसे पहला जो इम्प्रेशन हमारे सामने से दिखाई देगा वो क्या होगा कि हमारी चमड़ी जो है पीली हो जाएगी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। हमारे शरीर में जो ग्लो है ना हेमोग्लोबिन की, इसीलिए है कि उसमें सफिशियंट ऑक्सीजन है। अगर सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं है, जब कोयले को आप फूंक नहीं मारोगे तो लाल नहीं होगा, अदरवाइज उसके ऊपर जो उसकी खाक है ना वो जमनी शुरू हो जाएगी और बेशक उसके अंदर आग रहे लेकिन बाहर से वो लगेगा, उसमें राख उसके ऊपर आनी शुरू होगी, फूंक मारोगे तो वो कोयला फिर जलना शुरू हो जाएगा। और अगर फूंक मारने वाली बात ही नहीं है, मतलब ऑक्सीजन ही कम है, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो उसी तरह राख बनना शुरू, बाहर से राख ही दिखाई देगा और इसकी वजह से क्या होता है हमारी चमड़ी जो है वो पीली हो जाती है। हमारी चमड़ी पीली हो जाती है, हमारे नाव नाखून ये पीले होने शुरू हो जाते हैं, आंख का रंग पीला होना शुरू हो जाता है, नेल आंखें ये सब पीली हमें दिखाई देनी शुरू हो जाती है, और उसके बाद पेशाब भी पीले रंग का होना शुरू हो जाता है। और ये जितनी बातें मैंने कही हैं इनका सीधा सा बात है, एक ही लफ्ज में हम कहें तो फिर कहेंगे जंडिस पीलिया, के भाई उस बंदे को पीलिया हो गया। अगर तो एक अध बार की बात है तो ठीक हो गया, उसके बाद दवाई हमने वो छोड़ दी या वो जहरीली चीज खानी छोड़ दी तो उसके बाद वो ऐसा ऐसा वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई रोजाना में इस तरह की कोई चीज खा रहा है तो उस लिहाज में आस्ते आस्ते ये चीज बढ़नी शुरू हो जाएगी, लिवर काम करना बंद कर, जैसे शराबी लोगों को बोलते ना कि भाई तेरा तो लिवर खराब हो गया डैमेज, उसका मतलब यही है कि जो नशा जो दवाई चीज आप अंदर दे रहे हो वो इतनी ज्यादा नुकसानदेह हो गई है कि उसने बहुत सारा हेमोग्लोबिन आपका तोड़ दिया, सेल आपके तोड़ दिए, जिसकी वजह से ये पीलिया होना शुरू हो गया। और उसकी तस्वीर भी मैंने आपको बताई थी कि लिवर में जितना भी खून जाता है उसमें से जितना भी आयरन होता है वो आयरन वहां तोड़ देता है, उसका काम ये है कबाड़िए की तरह कि जो चीज उसके पास आई उसको पीस पीस कर देगा, तोड़ देगा, और उसमें से जो जरूरी चीज है वो खरीद लेगा, इसी से उसकी दुकानदारी चलती है। और जो उसके पास ज्यादा बच जाएगा वो ज्यादा भेज देगा खून में,
अगर कोई कम है तो उसको कम भेजना पड़ेगा। और अब हम बात कर रहे हैं कि आयरन तो बहुत टूट गया, हीमोग्लोबिन तो बहुत टूट गया, इसका मतलब जितना ज्यादा आयरन टूटेगा उतना ज्यादा ही उसमें बिली रूबन बिली वर्डन बनेगा। इनको हम बोलते हैं बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट। ये बाइल पिगमेंट बाइल साल्ट इतने ज्यादा बन जाएंगे और इतने ज्यादा हो जाएंगे लिवर में, तो क्या करेगा वो ज्यादा खून में भेज देगा। ज्यादा खून में भेजेगा तो हमारा रंग पीला, आंखें पीली, पेशाब पीला, होंठ पीले, नाखून पीले, ये सब होना शुरू हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली जब ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी तो फिर एनर्जी का लेवल भी हमारा लो हो जाएगा और फिर थकावट, जल्दी थकावट, फटीग जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, थकावट होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा काम करो या सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, घबराहट होती है, थकावट हो जाती है, वैसे भी चलने में जो है वो सांस फूलना शुरू हो जाता है, जो पहले काम आप कर सकते हैं अब वो नहीं कर पाते हैं। ये सब चीजें बताती हैं कि अंदर मेम्ब्रेन की दीवार टूट गई। बाहर जा ऐसे कहें कि बाहर का प्रेशर किसी चीज से इस तरह बढ़ गया कि बाहरी चीजें जो नहीं चाहिए थी सेल को वो भी सेल के अंदर पहुंच गई। क्योंकि हर चीज जो अनवांटेड है, जो आपके शरीर को नहीं चाहिए, वो अगर सेल के अंदर जाए, इधर आलू ही ज्यादा खा लें, पोटैटो ज्यादा खा लें, आप परोठे ज्यादा खा लें, तो फिर आप लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर देते। क्यों लेने शुरू कर देते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही। हर एक चीज चाहे वो जरूरी है, खुराक का अंग है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर कोई चीज अंदर चली जाती है तो वो इस तरह का हालात पैदा करती। गन्ने ज्यादा चूप ले, ये ज्यादा रसगुल्ले ज्यादा मीठे खा लिए तो फिर भी उनको ऐसे थकावट, घबराहट, वीकनेस आनी शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि शुगर ज्यादा अंदर चलेगी, शुगर ज्यादा अंदर चलेगी, ऑक्सीजन ज्यादा बाहर चलेगी, हेमोग्लोबिन ज्यादा टूट गया, उसकी वजह से ये होगा। हालांकि शुगर बहुत जरूरी है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए या सेल बनाने के लिए, एनर्जी क्रिएट करने के लिए शुगर बहुत जरूरी है, लेकिन आपने ओवरलोडिंग कर दिया। जब आप ओवरलोडिंग कर देंगे तो आपने एक बात मैंने आपको इसको याद रखने के लिए बताऊं कि अगर आप किसी पार्टी पर चले जाओ ना तो जितना हम घर में खाते हैं उतना नहीं खाते, उसे कई कई गुना ज्यादा खा जाते। ये भी खा लो, वो भी खा लो, इतने रसगुल्ले खा लो, इतनी मिठाई ये खा लो सब। और दूसरे दिन पार्टी से रात आए थे, दूसरे दिन काम पर जाने को मन नहीं करता। मजबूरी हो तो लोग जाते जरूर हैं, लेकिन ये बोलते यार नहीं, मन नहीं करता, बड़ी थकावट सी है, पता नहीं पार्टी में गए थे, ऐसे हो गया, इसलिए हो गया। एक्सरसाइज तो फ्रेश करती है ना, अगर नाचे हैं, कुछ ऐसा किए हैं तो फ्रेश होना चाहिए ना, लेकिन फ्रेश नहीं है। क्यों नहीं है? कि जितनी कैलोरीज आपके बॉडी को चाहिए उससे ज्यादा आपके शरीर में चली गई है और उसने आपकी ऑक्सीजन का जो काम था वो कम कर दिया है सेल में, जिसकी वजह से थकावट होती है, रुकावट होती है, तो ये फटीक वगैरह होनी जो आम तौर पे शुरू हो जाती है। अब ये काम मेम्ब्रेन का, हम सिर्फ मेम्ब्रेन के डैमेज की बात कर रहे हैं हिंदी में। मेम्ब्रेन का डैमेज होना अगर तो टेम्परेरी है तो थोड़ी देर बाद सेट हो जाता है, थोड़े दिनों में सेट हो जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज लगातार शरीर में जा रही है तो उस लिहाज में आम तौर पे क्या होगा? पेन एब्डोमेन, पेट में दर्द होनी शुरू हो जाएगी, या ऐसा कहें कि तिली बढ़नी शुरू हो जाती है। कोई भी चीज अनवांटेड चली जाए शरीर के अंदर जिससे आपका हेमोग्लोबिन ज्यादा टूटना शुरू हो जाए तो उस लिहाज से ऐसा होगा कि भाई सेल ज्यादा टूट गए हैं, जिसकी वजह से सेल की रिपेयर की, क्योंकि ऐसे मैं बोल दूं तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसलिए ऐसा हो रहा है कि जितने भी सेल बोन बनाती है ना, लंबी लंबी बोन जितनी भी है, ये हमारे सेल बनाती है ना, तो ये खून में छोड़ देती है। ये सब खून में छोड़ने के बाद कहाँ पहुंचते हैं? सर्कुलेट करते करते करते करते तिली के पास पहुंचते, जिसको स्प्लीन बोलते हैं, स्प्लीन में पहुंचते हैं। स्प्लीन एक इनका इस तरह का डिपार्टमेंट है, एक ऑफिस है, जिस तरह रिक्रूट को भर्ती किया गया, उसको पूरी छह महीने की ट्रेनिंग दी गई और छह महीने की ट्रेनिंग के बाद फिर उसको देखा गया कि अब इसको बॉर्डर पर लड़ाई के लिए भेजा जा सकता है कि नहीं जा सकता। और जो पूरे ट्रेंड होते हैं वो पास कर जाते हैं रिक्रूटिंग ट्रेनिंग और फिर उसको वापस भेज जाए। वो पास कौन करेगा? वो स्प्लीन है हमारी। खून के सेलों को स्क्रूटिनाइज करने के लिए
या उनको ये देखने के लिए कि कितने सर नॉर्मल हैं जिनको आगे खून में काम करने के लिए भेजा जा सकता है, और अगर वो देखें कि इसमें जो सेल हैं ये काम करने लायक नहीं है, सर्कुलेट करते करते बोन ने बनाए सेल खून में छोड़ दिए, चलते चलते सर्कुलेशन में जितने भी वो खून के जरिए स्प्लीन तिली के पास पहुंचते हैं वो उनको फिर फिल्टर करती, जो नॉर्मल सेल हैं उनको फिर सर्कुलेशन में भेज देती है, जो नॉर्मल सेल नहीं है उनको वहां रोक देती है, उनको जाकर डिस्ट्रैक्ट कर देती है। इसको बोलते हैं फेगोसाइटिक फंक्शन, खा जाना, खत्म कर देना, उसको खत्म कर देती, नहीं भी तुम चलने लायक नहीं हो, तुम नहीं मिलिट्री में बॉर्डर में नहीं जा सकते, तुम ट्रेन नहीं हो पूरी तरह, उनको वो वहां खत्म कर देती है, और फिर जो नए सेल आने शुरू हो जाते हैं फिर उनको स्क्रूटिनाइज करना शुरू कर देते। अब हम बात ये कर रहे हैं कि अगर किसी ने इस तरह की जहर, इस तरह की दवाई या इस तरह की कोई चीज रोजाना ही खा रहा है बंदा, और उस रोजाना उसके शरीर में जा रही है, तो अल्टीमेट रोजाना ही तिली को वही काम करना पड़ रहा है, सेल तो बन रहे हैं, तिली उसको फिल्टर भी कर रही है, नए नए बढ़िया सेल जो है उनको वो भेज रही है सर्कुलेशन में, लेकिन बाकी स्टोरेज ज्यादा बच गया। बाकी अगर स्टोरेज ज्यादा बच जाएगा तो फिर तिली बढ़नी शुरू हो जाएगी बाईं तरफ पसलियों के नीचे, आम तौर पे वो तिली हमें दिखाई नहीं देती, अगर दबा कर आप देखोगे ना पसलियों के नीचे तो वो तिली दिखाई नहीं देती, लेकिन जिनकी ये प्रॉब्लम हो, चाहे बाहर से कोई चीज अंदर जा रही है तिली, चाहे अंदर से किसी अंग की खराबी से वो जहर बन रहा है, इसको इंडोटॉक्सिन बोलते हैं। दो तरह का जहर मैंने आपको बताया था, एक तो आपकी खुराक के साथ जा रहा है जो बाहर से जा रहा है उसको हम बोलते थे एग्रोटॉक्सिन, और एक ऐसा है किडनी खराब होगी, किडनी खराब होगी अब उसमें यूरिक एसिड फिल्टर नहीं हो रहा है, वो जहर के तौर पर शरीर में दाखिल हो रहा है। इसी तरह ही अलग अलग अंगों में अगर उनका निकास नहीं पूरा हो रहा गार्बेज का, वो खून में चला गया तो वो भी एक जहर का काम करता है, इसको हम बोलते हैं इंडोटॉक्सिन। तो सेल से बाहर से भी कोई जहर जा सकता है, अंदर से भी कोई सेल जहर जा सकता है, लेकिन काम उनका वही होगा कि वो सेलों को ब्रेक करेंगे, किडनी जो स्प्लीन है उसका काम बढ़ जाएगा, उसका काम बढ़ जाएगा, पर उसकी अपनी काम करने की समर्थता है, एक लिमिट है ना कि कितना वो खून साफ कर सकती है, और उससे ज्यादा सेल टूटना शुरू हो जाएंगे, ज्यादा जहर खा लिया या बार बार खा लिया, अल्टीमेट उतने बोन सेल बना नहीं रही जितने सेल आगे चाहिए, और उनमें से भी डैमेज सेल है, उनमें भी पूरे ट्रेंड फौजी नहीं है, तो वो क्या करेगी, स्प्लीन के पास स्टोरेज इतना नहीं रहेगा और वो बढ़ जाएगा, फैल जाएगा, तो वो तिली जो हमारी पसलियों के नीचे हमें दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, इसको बोलते हैं हुडकिंस डिजीज। और फेगोसाइटिक फंक्शन जो उसका था कि कितना खा लेगी बेचारी, कितना हजम कर लेगी, कितना बर्न आउट कर देगी, पुलिस वाले पकड़ते हैं ना, ड्रग वगैरह पकड़ते हैं तो फिर कई बार उसको बर्न करते हैं, माल खाने का सामान निकाल कर उसको बर्न करते हैं कि भैया या कहीं और मार्केट में ना जाए या कहीं ऐसा ना हो। सो इसलिए ये तिली का काम है तो उसके पास जितना गार्बेज बच गया, एक्स्ट्रा गार्बेज हो गया, अब उसके पास स्टोरेज नहीं है तो फिर वो उसको कितना बर्न करेगी, बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर तिली बढ़ जाती, वो गार्बेज बढ़ गया तो तिली। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी का सेल का मेम्ब्रेन किसी कोई जहरीली मादा अंदर जाने की वजह से, या इवन खुराक का ही ऐसा हो गया जो खुराक नहीं चाहिए वो आप खा रहे हैं उसकी वजह से हो गया, या अंदर कोई किसी को किसी अंग का कैंसर हो गया या किसी अंग की खराबी होगी, अंदर से टॉक्सिन बन रहा है और वो सेलों में जा रहा है, तो उसकी वजह से अगर सेल ज्यादा टूट रहे हैं, एक तो मैंने बता दिया कि पीलिया हो जाएगा, रंग पीला हो जाएगा, पेशाब पीला आना शुरू हो जाएगा, सांस फूलना शुरू हो जाएगा, नौ पीले होने शुरू हो जाएंगे, ये आंखें पीली होनी शुरू हो जाएंगी, ये निशानी होगी। दूसरी मैंने आपको ये बात बताई कि अगर इस तरह की कंडीशन आए, ये हमें बताएगी कि नुक्स कहाँ है सेल मेम्ब्रेन में, कि पीली बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा कि कोई पुरानी बीमारी का मरीज हो ना, जस्ट फॉर कैंसर आप ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं, किसी का कैंसर हो ना तो जिस जगह का कैंसर हो सबसे पहले वहां के एरिया के नजदीक जितने भी लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड वो हैं
जो गार्बेज इकट्ठा करते हैं, सेलों से गार्बेज इकट्ठा करते करते करते करते खून को साफ करते हैं कि खून तो नॉर्मल स्पीड से चलता रहे, वापसी जाने वाला आने वाला खून फ्रेश है वो सीधे जा रहा है, वो जीटी रोड है उसमें कोई लाइन कोई ट्रैफिक लाइन लाइट नहीं है रुकने वाली, वो सीधा सेलों में जा रहा है। सेलों से जो वापसी आता है उसमें जगह जगह ब्रेकेज है, जैसे पुलिस कटा रहता है, उसमें जितना भी गार्बेज या जितना भी इस तरह की चीजें होती हैं जो खराब सेलों के या खराब अंग से ज्यादा गार्बेज बन के निकल रहा है उनको जगह जगह रोकती है ट्रैफिक, इसको चेक करेंगे भाई इसके कागज पत्र पूरे हैं कि नहीं है, वो पुलिस वाले उसको रोक लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स। और लिम्फ नोड भी अगर बहुत ज्यादा खराबी आनी शुरू हो जाए तो कितनों को कंट्रोल करेंगे, अगर एक मोटरसाइकिल आ गया तो उसको रोक लिया, अगर ज्यादा मोटरसाइकिल आ जाएंगे तो फिर कितने के सफाई वहां होंगे, कितने को उसको कंट्रोल करेंगे। हर लिम्फ नोड की अपनी अपनी कैपेसिटी है, और अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो लिम्फ नोड फूलने शुरू हो जाएंगे। अगर लिम्फ नोड का सीधा चैनल है वो कहाँ जाएगा, तिली में। अब तिली भी बेचारी ऐसी है कि बेकाबू हो गई है, तो इस लिहाज से हम लोग चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ लिम्फ नोड बढ़ गए हैं, ये साबित करता है कि किधर से बीमारी आ रही है, किधर से ये लिम्फ नोड बढ़ रहे हैं, और अल्टीमेट स्प्लीन तिली तक पहुंच गए हैं, अब हमारी तिली भी बढ़ गई। वो जो तिली का बढ़ जाना है वो इस बात का सूचक है कि आपके सेल का मेम्ब्रेन नॉर्मल नहीं रहा। उसके बाद अब मान लिया जाए जो चीज हमें नहीं चाहिए वो अगर शरीर में दाखिल हो गई, सेलों में दाखिल होगी, मैं इसकी और एग्जांपल आपको दूं, दूध है ना, दूध में बिगड़े चाटा दूध का कांजी की कुख है, कांजी की एक बूंद, कांजी की एक बूंद अगर डाल दो दूध में तो वो पूरे का पूरा दूध खराब कर देते, क्या बन जाता, पनीर बन जाता। जैसे हम पनीर बनाते हैं ऐसे घर में उसमें नींबू डाल देते हैं या कुछ और चीजें डाल देते हैं जिससे दूध फूट जाता है, पानी अलग हो जाता है और उसमें जो थिक मटेरियल है वो अलग हो जाता है। और अगर किसी सेल में इस तरह की कोई चीज चले गई तो वो क्या करेगी, अंदर का जो मटीरियल था उस सारे मटीरियल को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, दूध मान ले जी, दूध का चाटा है ये, जो पूरा सेल है ये एक चाटी है दूध की, पॉट है, और उसमें जितना अंदर है जो भी कुछ है उसको हमने साइटोप्लाज्म कहा था, उसको अब दूध मान लें। और अब इसमें कोई इस तरह की चीज आ गई जिसको हम कांजी की तरह वह, जिसको हम खट्टे की तरह नींबू की तरह बोले, तो वो क्या कहेगी, वो अंदर के दूध को फुटा देगी। अंदर का दूध फूट गया, अब क्या होगा, सेल के अंदर इस तरह की कंडीशन जब बन जाएगी तो सभी चीजें जितनी भी उसके अंदर और काम करने वाले डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग चीजें हैं, वो सारे के सारे अलग अलग हो जाएंगे, अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहेंगी, यहां तो आग फैल गई है अब सब सेपरेट हो जाए। तो वही काम जब इस तरह होना शुरू हो जाता है तो जितने भी सीरम हैं, जितने भी सिक्रीशन इस शरीर से बन बन कर शरीर को हजम करने के लिए निकलते हैं उनको एंजाइम्स बोलते हैं। जैसे पेट में HCL निकलता है या पेप्सिन निकलती है या बाइल निकलता है लिवर से या पैंक्रियाज से, इंसुलिन निकलती है, एंट्रोपेनाइज आंतड़ियों से निकलती है, इनको हम एंजाइम्स बोल, मुंह में निकलता है टाइलन। तो जितने भी ये एंजाइम निकलते हैं ना ये पूरे के पूरे इस तरह हो जाते हैं जैसे दूध फूट गया हो। दूध फूट गया है क्योंकि सेलों के अंदर इस तरह की कोई चीज चली गई कि वो अंदर का निजाम, अंदर का जो दूध नॉर्मल नहीं रहा। और इसकी वजह से क्या होगा कि जब ये फूटना शुरू हो जाएगा तो फिर अलग अलग थक्का बन गया ना, अलग अलग वो जमना शुरू हो गया ना, जिसको हम पनीर बोलते हैं, वो नॉर्मल तो नहीं रहा, नॉर्मल दूध तो नहीं रहा, ठीक है हम उसको अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये टेंडेंसी अगर मान लिया जाए लिवर से बाइल निकल रहा है और बाइल जमा हो रहा कहाँ, गॉल ब्लैडर में जमा हो रहा है, और उसमें आकर हुआ क्या कि वो तो फूट गया, वो तो पनीर बन गया है, तो उसका पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा, वो जो थक्का जम गया है वो नीचे बैठ जाएगा, और नीचे बैठा बैठा वो सख्त होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लैडर की एक कंसिस्टेंसी है कि हमेशा मूव करता रहता है, हमेशा जैसे कोई चीज सुकड़ती है फैलती है, सुकड़ती है फैलती है, हर एक सेल ही ऐसे कर रहा है, तो गॉल ब्लैडर भी ऐसे कर रहा है, तो वो जो सिंगनी चीज है उससे
पूरी तरह स्क्वीज होकर निचोड़ कर पानी तो उसका ऊपर आ रहा है, छगना मादा जम रहा है, तो क्या बनेगा? गाल ब्लैडर का स्टोन बन जाएगा। और गाल ब्लैडर का स्टोन ही क्यों बनेगा? किडनी में भी तो वो जा रहा है, वही खून जा रहा है। इसी तरह किडनी के अंदर भी क्या होगा कि स्टोन बनना शुरू हो जाएगा। अकेला किडनी में ही नहीं, बॉडी के और बहुत सी जगह है, जैसे ग्लैंड जितने भी हैं, थायराइड ग्लैंड गले में, मुंह में बहुत सारे सबलिंगुअल ग्लैंड हैं या वेस्टिबुलर ग्लैंड, कितनी तरह के ग्लैंड मुंह में, जितनी जगह जगह अलग अलग ग्लैंड हैं, उनमें भी यही कंडीशन बन जाएगी कि भाई वो दूध तो फूट गया और उसी में भी पथरी बनने की टेंडेंसी बन जाएगी। अब यही बात, यही खून चमड़ी में भी तो जा रहा है, चमड़ी में भी जा रहा है, तो वो कड़ी आज जितने बोलते ना स्किन टैग हो गए, मौके हो गए जी, बड़े बड़े मौके होने शुरू हो गए, या कहीं ना कहीं ट्यूमर गिल्टियां बननी शुरू हो गई हैं शरीर में, मेरे यहां पर भी गिल्टी, मेरे पेट में भी गिल्टी, या बाहों में है गिल्टी, ये जितनी भी गिल्टियां होनी शुरू हो जाती है ना, उसका मतलब ये है कि आपका दूध फूट गया है, सेल मेम्ब्रेन खराब हो गया, अंदर का जो साइटोप्लाज्म था उसका स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं रहा, और इसकी वजह से यही अब जगह जगह सेल में एक दूसरे से सेल में जा रहा है, सेल टू सेल बॉडी में जा रहा है, और बॉडी में जाते अलग अलग जगहों में जम रहा है, वहां पर ये स्टोन फॉर्म करेगा। सो ये बातें आम तौर पर मान लिया जाए पथरी का आता है कोई भी केस किसी के डॉक्टर के पास, तो असल वो ये होता क्या, अच्छा भाई गाल ब्लैडर निकलवा दो। अरे भाई गाल ब्लैडर निकलवाना हाल तो नहीं है ना, असल हालत तो ये है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये बात चली कहां से है। गाल ब्लैडर निकाल दोगे तो आंखें बंद कर लोगे तो बिल्ली कहे कि कबूतर नहीं आ रहा, वो तो आ रहा है, वो दूसरे किसी अंगों में जाएगा और कहीं जगह जाकर ये संगना जमना शुरू हो जाएगा। तो पर डॉक्टर लोग क्या करते हैं, मानते ही नहीं है, नहीं नहीं ये जो तुम्हारी बवासीर है ना, इसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है, गाल ब्लैडर के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन भाई अंग तो वही हैं, वही सेल हैं, वही सेलों का अंदर का निजाम मेम्ब्रेन खत्म होने की वजह से, खराब होने की वजह से अंदर का निजाम तो हर एक जगह का बदला है, ऐसे तो नहीं है कि एक जगह का बदल गया दूसरी जगह का नहीं बदला है, हर एक जगह का होता है। हाँ ये होता है कि एक जगह में बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया दूसरी जगह में, मैंने एक एग्जाम्पल दी थी यहाँ का, अगर कहीं रिश्तेदारी में कोई डेथ हो जाती है ना, जितनी जितनी हमारी नजदीकी होती है उसमें उतना उतना हमें दुख होता है, उतनी उतनी पीड़ होती है, जितना जितना दूर का अंग होता है उतना उतना थोड़ा दुख कम होता है, दुख तो होता है उतना कम होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में मान लिया जाए कोई प्रॉब्लम आ गई किस तरह की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किडनी में इफेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि सर्कुलेशन में इफेक्ट होगा, लेकिन वो दूर के रिश्तेदार हैं उनमें थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा, और ज्यादा इफेक्ट हमें उस अंग में ही दिखाई देता है। इसीलिए डॉक्टर लोग बोलते हो तेरे तो गाल ब्लैडर में नुक्स है, गाल ब्लैडर निकाल दो, जहां पर दुख है उसी को निकालने की कोशिश की जाती है, ये जो सही ट्रेंड नहीं है। क्योंकि हम लोग ने एक डेफिनेशन दी थी कि असल में जो कुदरत ने शरीर बनाया है उससे सियाने उससे समझदार तो हम नहीं है ना, हर एक चीज जो उसने लगाई है ना वो किसी ना किसी जरूरत के हिसाब से लगाई है, और हम कहें कि नहीं भाई ये चीज तो इसकी तो जरूरत नहीं। अब देखा कि वो ट्रेंड चलता है कि किसी को अपेंडिक्स जो होता है ना, कई बार बच्चे पैदा होते ही उसका अपेंडिक्स निकाल देते हैं कि ना भाई आगे चलकर इसको कहीं अपेंडिसाइटिस ना हो जाए, इसी प्रॉब्लम ना हो जाए, कई बार लोग पहले मर जाते थे चले अपेंडिक्स की वजह से अंदर फंस जाता था, तो बोलते इसको निकाल ही दो। लेकिन अभी हमें पता चला, क्योंकि डे टू डे जो रिसर्च होती है पता चलता है कि जितने भी अंग कुदरत ने शरीर में लगाए हैं ना उनका कोई ना कोई फंक्शन है, उसको निकाल देने का मतलब ये हम इग्नोरेंट हैं, हम नहीं जानते उसके फंक्शन के बारे में, और हम जानते हैं और फिर भी निकालते हैं तो हमारी मूर्खता है, क्योंकि इसका कोई पर्पज है जो उसने लगाया है वो काम कौन करेगा, अगर नहीं करेगा तो वो आगे ट्रांसमिट होगा। एक आदमी क्लर्क यहां काम करता था, उसका कोई काम था, अब आपने उसको हटा दिया, अब वो फाइलें कौन देखेगा, और किसी और डिपार्टमेंट जाएंगे उसको खराबी करेंगे, उसका तो अपना काम है। तो इसी तरह गाल ब्लैडर को निकाल देना हल नहीं है, या किडनी वाली बात कहां भी हो गई उसको वहां से हटा देना अंग को, ये उसका हल नहीं है। हल ये है, सोचना है
कि अगर मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से अगर साइटोप्लाज्म में उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है तो उसको ठीक करना है, फाइंड आउट करना है कि क्या ये इंटरनल इंडोटॉक्सिन से हुआ है या एक्सटर्नल एक्सोटॉक्सिन से हुआ है। तो उसके मुताबिक डॉक्टरों को परहेज बताना होगा, उसके मुताबिक डॉक्टरों को इलाज करना होगा ताकि वो चीज परमानेंट हो जाए, परमानेंट ठीक हो जाए, किसी अंग को काट कर बाहर फेंकना ना पड़े। लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी में सब चीजें ऐसा कर रहे हैं और सभी अंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसका अब तो कोई पर्पज नहीं है, अब इसको निकाल दें। अब जब हम इसको ऐसे करते हैं, जानते हैं कि ये हो गया है, इसकी वजह से और क्या निशानियां आएंगी, पीडीए की बात मैंने बता दी, सांस ब्रेथलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होनी शुरू हो जाएगी और दिल ज्यादा धड़कना शुरू करेगा। क्यों ब्रेथलेस में ऐसा होना शुरू हो जाता है, मतलब अब ऑक्सीजन पूरी जा नहीं रही। अब दिल का क्या काम है, दिल का काम है सेलों को, खुराक को अलग अलग जगह पहुंचाना। अब सेलों के लिए वो ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए उसके पास रेड ब्लड सेल हैं, वो तो डब्बे हैं, खाली खाली डब्बे हैं ट्रेन के, उसमें माल भर के जाता है, ऑक्सीजन भर के जाती। अब और सेल ही टूट गए हैं, सेल ही कम है, ट्रेन के डब्बे ही कम है जिसमें ऑक्सीजन जा सकती है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। अब दिल का क्या काम है कि ना भाई तेरा काम है सप्लाई करना। अब मिस्त्री दीवार पे काम कर रहा है और जो वो सीमेंट पहुंचाने वाला बंदा या ईंट पहुंचाने वाला बंदा, वो सीमेंट ईटी नहीं पहुंचाएगा तो मिस्त्री तेरा क्या करेगा, नहीं तो उसको जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी चक्कर लगाने पड़ेगा कि फटाफट चलो भाई, मिस्त्री खाली नहीं रहना चाहिए। तो वही काम ऑक्सीजन पूरा करने के लिए दिल को बार बार धड़कना पड़ता है, बार बार 72 से 80 बार हम लोग नॉर्मल समझते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही किसी भी हालात में, अब ये हालात तो मैंने आपको मेम्ब्रेन का बता दिया ना, अगर किसी भी हालात में ये अगर पूरा नहीं हो रहा तो उस हालात में दिल को बार बार धड़कना पड़ेगा, बार बार इसको सर्कल में लाना पड़ेगा और इसी हिसाब से जो फेफड़ों का काम है कि नहीं बाहर से ऑक्सीजन और ज्यादा ले लो बाहर से, ओके बाहर की ऑक्सीजन में नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है और उसमें से ऑक्सीजन हम उसको फिल्टर करके सेलों में देनी है, लेकिन अब पूरी नहीं हो रही तो फिर हम सांस भी तेज तेज बार बार लेंगे और ये कंडीशन जो है सामने हमें दिखाई देगी जो ये साबित करेगी, पेशेंट आया सामने देखें और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं इसका मेम्ब्रेन डैमेज हो गया है। और अगर ऐसा होना शुरू हो जाता है तो उसमें मसल की वीकनेस होनी शुरू हो जाती है, चलने फिरने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, हरेक सिस्टम ही वीक हो जाए, भूख नहीं लगती, इंडाइजेशन होना शुरू हो जाता है क्योंकि हजम नहीं हो रहा है। और एक और बात, अगर जिन लोगों को ये चीज लगातार लंबे समय तक रहती है, अब बुजुर्गों को देखते हो ना कि एड़ी फट गई है, उसकी बिराइयां फटनी शुरू होगी जिसको बोलते हैं, उंगलियों की जो टिप्स हैं पोते हैं वो क्रैक होने शुरू हो गए। ये क्यों होता है, ऐसे होता है कि उनके सेलों में जो चीज जा रही है वो पूरी तरह वहां एडजस्ट नहीं हो रही और वो खुराक सर्कुलेशन में भी पूरी नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से जैसे नहर की टेल होती है ना, जहां पर बहुत ब्रीक हो जाती, छोटी हो जाती नहर, वहां पर पानी नहीं जाता, अगर पीछे से प्रेशर कम हो या बाकड़ा से पानी कम छोड़ा जाए तो वो नहीं जाएगी। इसी तरह ही बुजुर्गों में ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उनकी एड़ियां फटनी शुरू हो जाती, रियाइयां फटनी शुरू हो जाती, उंगलियों के टिप्स जो फटने शुरू हो जाते, पर ये बात हम बुजुर्ग की कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन किसी यंग एज में होनी शुरू हो जाए तो फिर हमें इमीडिएट इंडिकेट करती है कि नहीं इसके शरीर में कोई ना कोई इस तरह का जहरीला मादा जरूर चले गया हैगा और जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मुझे याद है एक एग्जांपल मेरे फादर साहब दिया करते थे हकीम अजमल खां के बारे में, वो बोलते हैं कि हकीम अजमल खां को उस वक्त तो वैद होते थे, इस तरह की क्लिनिक बना के हमारी तरफ तो नहीं बैठते कि दो तीन कमरे हम रिजर्व करके बैठे हैं कि मेडिसिन अलग है, कंसल्टेशन अलग है, फाइलें अलग है, इस तरह का तो काम नहीं होता था उस वक्त। तो उस वक्त वो दरख्तों के नीचे बैठे हैं, वैद जी बंदे लगे हुए हैं, कूट पाट के वो सबको दे रहे हैं, तो इस तरह की बात थी। कुछ अंग्रेजों ने सोचा कि हमने सुना है अजमल खां हकीम का, बहुत नाम सुना है, देखते हैं चेक करते हैं उसको, और वो उसके पास चेक करने के चले गए। उसने बोला कि भैया हम लोग आए हैं और देखिए तो नब्ज देखकर हमारी बताइए क्या बीमारी है, और उन्होंने देखा और उसने बोला अच्छा इनको भाई फलानी फलानी दवाई दे दो।
बोला यार नाम तो बहुत सुना था, इसने तो एक मिनट में हमें कहा वो दवाई दे दो, इसका क्या हुआ, कैसे इसको कैसे पता चल गया बीमारी क्या है कैसे है? वो गए और थोड़ी दूर जाकर बोलते हैं यार ये ऐसे ही नाम सुना था, नाम ही चलता है इसका और कोई काम तो है नहीं इसका। और उसके किसी शागिर्द ने अजमल खान के शागिर्द ने सुन लिया तो उसने वैद्य जी को बताया, अजमल खान ने कहा उनको बुलाकर लाओ, बुलाया, वो बोलता है तुम्हारे शरीर में आज से 10 साल पहले का कोई जहर है और उस जहर की वजह से तुम्हारा ये मेम्ब्रेन खराब हो गया है जिसकी वजह से मैंने ये दवाई आपको दी है। बोला भाई कुछ हुआ था तो उसने बताया मुझे सांप लड़ा था, सांप ने काटा था। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बता रहा हूँ कि एग्जांपल के तौर पे जब भी कोई ऐसा कुछ होता है तो ये निशानियां आम तौर पे आनी शुरू हो जाती, डिजीनेस होगी, बंदा इरिटेट हो जाता है, जब सांस फूलता है ना कि नहीं काम चला जाता तो काम करना पड़े तो आदमी इरिटेट हो जाता है, ये साधारण सी बात है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पल्पिटेशन हो गया, डिजीनेस होगी, इरिटेशन होगी, मांसपेशियां सूखनी शुरू होगी, बेआइयां फटनी शुरू होगी, अगर लंबे समय तक है और जवान बंदा बूढ़ा है तो हम समझते हैं कि कंडीशन है, एज ओल्ड एज की सर्कुलेशन स्लो हो गया उसकी वजह से ऐसा हो गया, लेकिन अगर यंग एज में ऐसा कुछ होता है तो उसके पीछे की कहानी सेल मेम्ब्रेन की है। अब भाई बूढ़ा हो गया और सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गया तो उसमें क्या होगा, उसमें दो बीमारियों का नाम हम देते हैं, एक को हम बोलते हैं अल्जाइमर्स, दूसरे को हम बोलते हैं पार्किंसन। अल्जाइमर को हम ये बोलते हैं कि ब्रेन को पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ब्रेन पूरी तरह काम नहीं कर रहा और याददाश्त कमजोर हो गई। अल्जाइमर के पेशेंट मैंने इस तरह के देखे हैं कि उस पेशेंट को उसके अटेंडेंट की लड़का या लड़की कोई लेकर आए हैं साथ में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जो साथ में मुझे लेकर आया है मेरा बेटा है बेटी है या कौन है, उनको ये भी याद नहीं, उनको नाम भी याद नहीं रहता। अल्जाइमर की कंडीशन इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। एक बार मैं ये जो टीवी स्टेशन है जिसके प्रोग्राम मेरे चलते थे जस्ट पंजाबी में, मैं उनका ये अल्जाइमर पर लेक्चर दे रहा था और बुजुर्गों के हालात की मैं बात कर रहा था और वो जो आदमी वो रिकॉर्डिंग करने के लिए आया था ना वो मशीन के पीछे बैठा हुआ रो रहा था कि हम लोगों को भी बुजुर्ग होना है, अगर ये हालात हमारे साथ बने जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं तो बहुत मुश्किल वाली बात है ना, और वो रो रहा था। अल्जाइमर किस तरह की कंडीशन है कि हमारे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट जो हैं वो मेरे सामने बैठे हैं, अब हम उसको पहचानते नहीं है, मतलब जो हमारा फ्रंटल लोब है ना ब्रेन का, ये अलग अलग ब्रेन एक बहुत बड़ा गांव बसा हुआ है, मैंने इसके कई बार बातें आपसे की, और इस ब्रेन के अलग अलग हिस्से हैं वो अलग अलग काम करते, हमारा फ्रंटल लोब जो है ना ये याददाश्त से कनेक्टेड है, हमारी कैलकुलेशन से कनेक्टेड है, हम मैथ में होशियार होते हैं कि कमजोर होते हैं, ये हमारे फ्रंटल लोब पे है, हमें याद रखना है, बहुत बहुत पुरानी पुरानी बातें भी हमें याद रह जाती है जिसका मतलब हमारा फ्रंटल लोब काम कर रहा है, अगर ये भी याद ना रहे कि ये सामने कौन बैठा है तो फिर समझो कि फ्रंटल लोब जो है डैमेज हो गया है। सो अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हालांकि ये बात है कि कुदरत ने ब्रेन को ठीक रखने के लिए, जैसे किसी देश से लड़ाई हो जाए ना तो हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो होता है देश का या फौजों का कमांडर होता है उसको बचाकर रखते कि इसकी कोई हानि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम हार गए, जंग को हार गए, ये एक टेंडेंसी होती है। और उसी लिहाज से कुदरत ने ये कहा कि ब्रेन पूरे शरीर को चला रहा है, इसको दो गुना खून दीजिए, इसको दो गुना खुराक जाए, दो गुना नहीं इसको ऑक्सीजन जाए, ज्यादा तो ऑक्सीजन की जरूरत है ना, हम आदमी है एकदम ही, दम आया तो हम आदमी नहीं तो डेड बॉडी है, और दम का मतलब है ऑक्सीजन। सो ब्रेन को जो आप देखते हैं ना गले में ये दो नाड़ियां ऊपर जाती, हाथ लगाकर देखो तो दोनों साइड में टक टक हो रही है, इसको हम बोलते हैं कैरोटिड आर्टरीज। तो ये जो कैरोटिड आर्टरीज है, खून की नाली बाई तरफ से दिल से निकलती है, उसका नाम है एओर्टा। एओर्टा फिर यहाँ पर आके एक गोलाई में पेट को नीचे जानी शुरू हो जाती है सभी अंगों को सप्लाई करने के लिए, लेकिन जैसे ही इसकी गोलाई है उसमें से दो नालियां सीधी सिर को जाती है, प्रेशर हुआ सीधी दो नालियां सिर को जाती है ताकि दो गुना खून सिर को पहले पहुंच जाए, उसको ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा खुराक मिले, बावजूद इसके भी अगर नहीं जा रही उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो फिर ये याददाश्त जानी शुरू हो जाती है, और बुजुर्गों में आमतौर पे होता है, पर हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की डैमेज की। अगर उम्र से पहले ऐसा हो जाए तो लोग आमतौर पे
50 55 60 में बोलना शुरू कर देते हैं और मुझे भूल गया यार, या भूलने की आदत हो गई है, बहुत सी चीजें मैं भूल जाता हूँ। साधारण सी बात है, आम ही लोग बात करते हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि उसके ब्रेन को पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही, खुराक की सप्लाई पूरी नहीं हो रही, ये इस चीज का साइन है। हाँ, इसकी दो कंडीशन है। एक को हम बोलते हैं एब्सेंट माइंडेडनेस, कि घरवाली ने कहा कि बाजार से आते समय ये चीज लेते आना, अब मेरे पास तो बहुत से काम है, मैं अपने ऑफिस का काम करूं, ये करूं वो करूं, करते करते ये भूल गया वो जो घरवाली ने कहा था सामान लाने के लिए, मैं नहीं ला सका। तो इसका मतलब है एब्सेंट माइंडेडनेस, ये वो बात नहीं है। एब्सेंट माइंडेडनेस के मेरा जो कोटा है इंटेलिजेंसी का उसको रखने का, क्या क्या मैंने करना है वो छोटा है, नहीं याद रहा। लेकिन दूसरी बात ये है कि हमें पता ही नहीं कि हमें क्या करना है, उस चीज का नाम है अल्जाइमर। और दूसरी बात मैंने इसी हालात में सेल मेम्ब्रेन की डैमेज के बारे में ही कही थी कि अगर इस तरह का होना शुरू हो जाता है और उम्र बुजुर्ग हो तो उसको हम बोलते हैं पार्किंसन। और पार्किंसन को दूसरे लफ्जों में हमें बयान करना हो तो हम कहेंगे इनकोऑर्डिनेशन ऑफ ब्रेन एंड बॉडी। माइंड का अगर बड़े अफसर ने हुक्म दे दिया, और आपने देखा होगा कि नीचे वाले अफसर काम ही नहीं करते, उसके बेपरवाही करते हैं, नहीं परवाह करते उसकी, तो किया है हुक्म तो कोई बात नहीं। अब हाईकोर्ट की बहुत सी बातें होती हैं, वो सरकार को बोल देते हैं, सरकार कान ही नहीं करती, तो मतलब इस तरह का भी काम हो जाता है। और इस चीज को हम बोलते हैं पार्किंसन। अगर शरीर में इस तरह का हालात बन जाए कि ब्रेन चाहता है मैं कुछ करूं, हाथ को ऑर्डर देता है कि ये पकड़ो, हाथ पकड़ ही नहीं रहा। कुछ लोगों के हाथ आपने कांपते हुए देखे होंगे, यंग एज में भी लोगों के हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम कोरिया। उसका कंडीशन भी नर्वस सिस्टम से संबंधित है। और हम ये बोलते हैं कि ओल्ड एज के हालात में अगर ऐसा हो जाता है, तो कई बार ऐसा होता है ना, आप अपने बुजुर्ग माँ बाप को, अच्छा बापू चाचा ये लो चाय का कप ले लो, आपने उसके टेबल पे रख दिया कि चाय पी लो, लेकिन अब उसका दिमाग तो ये करता है कि भी मैं चाय के कप को पकड़ूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और वो चाय के कप को जहां से पकड़ना वो पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक झटका लगता है और कप गिर जाता है। ये इसको हम बोलते हैं पार्किंसन। इनकोऑर्डिनेशन है ब्रेन का और अपने शरीर का काम करने का। ब्रेन ने तो ऑर्डर किया है कि कप पकड़ो और पियो, लेकिन हाथ उसको उसके मुताबिक नहीं कर रहा जैसे उसने कहा था। तो ये सब बातें जो है आमतौर पर ओल्ड एज में होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन अगर यंग एज में हो जाए तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है कि भाई ऐसा हो गया। अब इतनी सारी बातें मैंने आप सब लोगों को बोल दी कि भाई फिर हल क्या है इसका, क्या करें। बड़ी बात ये है कि सबसे पहले हम ये शनाख्त करें इंडोटॉक्सिन है कि एक्सोटॉक्सिन। हमारी खुराक, पहले डॉक्टर बोल रहे हैं परहेज करो जी, अच्छा डॉक्टर जी खाना क्या है मुझे, ये आम लोग पूछते हैं। तो मतलब क्या है कि अगर कोई एक्सोटॉक्सिन है खुराक की वजह से जा रहा है या किसी दवाई की वजह से जा रहा है, ये डॉक्टर का काम है आपको बताना कि कौन कौन सी चीज आपके शरीर को फिट नहीं बैठती, उसको जाने के लिए आपको क्या करना है। तो ये इसको बोलते हैं एक्सोटॉक्सिन। तो सबसे पहले आपको शनाख्त करनी है उसके खान पान रहन सहन। एक पेशेंट मेरे पास आया और उसकी अपनी कुछ प्रॉब्लम बता रही थी, तो मैंने कहा भी काम कब करते, कहता भाई काम तो मैं रात को करता हूँ। अरे भाई रात के समय में कुदरत भी अपना आचरण बदल देती है। रात के मिडनाइट, लोग बोलते हैं ना कि रात को मिडनाइट दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए, कारण क्या है कि सारा दिन वनस्पति हमें ऑक्सीजन देती है और हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वनस्पति का जीवन कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन मिडनाइट जैसे घर की सवानियां होती है ना, सारा काम किया करने के बाद कब भांडे बर्तन जितने भी है उनको गर्म पानी से धोकर रख देती है कि सुबह इनको फिर हम इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में जा, हम बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, नींद पूरी तरह आ गई, हाथ ढीले हो गए, आंखें बिल्कुल रिलैक्स हो गई हैं, नींद में होते हैं, उस वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे शरीर में एंटर करती है। जैसे कि ऑक्सीजन भारी है
ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन जाती है अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड हल्की होती है वो ऊपर निकलती है, लेकिन उसके पैर क्या होता है कि आप रिलैक्स हो गए। रिलैक्स होने की वजह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे, और दूसरी बात उस वक्त एनवायरमेंट में भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, और जा भी जाती है तो आपका जो फेफड़े हैं पूरी तरह फैल जाते हैं, पूरी कैपेसिटी में फैल जाते हैं, और फिर उसके बाद जब आप उठते हो तो उसमें पूरी ऑक्सीजन भर जाती है। कोई भी आदमी अगर 10 से लेकर 2 बजे तक पूरी नींद ले ले, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो अमेरिका में हो, पूरी नींद मिडनाइट की 10 से लेकर 2 ले जाए, उसको 8 घंटे या 10 घंटे बेड पर लेटने की जरूरत नहीं है, उसकी ऑक्सीजन जितनी उसको चाहिए वो कैपेसिटी फिल अप हो जाएगी, और उसमें जो रेजिडुअल पोर्शन है तो टाइडल एयर, टाइडल वॉल्यूम, ये सब रेजिडुअल वॉल्यूम, ये सब हम गिनती करते रहते हैं लंग्स की, मतलब उनका कैपेसिटी जो है वो पूरी हो जाएगी कि रेगुलर ब्रीदिंग में एक्स्ट्रा लोड उसका बच जाएगा ऑक्सीजन का, वो फ्रेश फील करेगा। और अगर आप इस समय में जाग रहे हो ना

0: परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल की आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह तक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 एंड 856-397-0301 858-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट के दोस्त दर्शन सिंह खक के नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम दिल दी आवाज परवाज रेडियो दे उते
1: तो सत श्री अकाल नमस्ते सलाम अलैकुम सारे मेरे वीर भैन भरावां नूं जिन्हें भी अपने प्रोग्रामां दे नाल जुड़दे ने प्रवास रेडियो नाल जुड़दे ने उन्हां दा सारयां दा बहुत बहुत स्वागत है जी आयां नूं वेलकम ये थाडा अपना रेडियो ही जदों मर्जी ऑन कर लो 24 घंटे थाडी सेवा विच हाजिर रहिंदा है और इस प्रोग्राम दीआं खूबियां इही है कि असीं सच ते पहरा सच्चियां गल्लां जो कुछ वापर उत्ते चानना पाउंदे रहिंदे आ तुहाडे नाल सो यही एक जर्नलिस्टी जर्नलिज्म दी जां किसे रेडियो दी जां किसे टीवी दी यही हुंदा है ते जिहड़े नहीं करदे सरकारां दे गुण गाउंदे आ ते कुछ लोकां दे गुण गाउंदे उहनां नूं फिर की कहिंदे आ जी गोदी मीडिया सो असीं कदी वी ठप्पा अपनी जिहड़ी है साडी जिंदगी उहदे उपर नहीं लवावांगे जद तक चलावांगे सच ते चलावांगे और थाडे सहयोग दी लोड़ है दोस्तो अज मैं ना कुछ बहुत ही प्यारे दो गीत लेके आया पूर्ण शाह कोटी हंसराज जी ते मास्टर सलीम ते दो तीन कलाकार होर है उन्होंने एक उन्हां दे जान तो बाद ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾਂਗੇ

बात है, क्या बात है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। दोस्तों अज आप मैं लभ के रखे सी एहो दो ओ तुहाडे रूबरू कीते आ, शुक्रिया तुहाडा भी धन्नवाद। सो आपां अगले प्रोग्राम वल चलदे आ, इक अद्धा गीत कोई होर सुनदे आ, अपने को 10 मिनट पए आ, उस तो बाद आपां खबरां वल चल जाणा। ते लो जी फिर आपां इसी चाल च रखिया जावे है ना इस प्रोग्राम नूं। लो जी मनमोहन वारस।

बिल्कुल दोस्तों, गल इस तरह जी, कल संडे असां अपने दिल की गलबात की सी, ते सॉरी सैटरडे, अज है जी संडे, ते अज है आप सब का प्रोग्राम, शायरो शायरी का प्रोग्राम। जेड़े सज्जन राइटर नहीं, शायरी नहीं करते, वो साढ़े नाल आण के किसी किस्म की भी गलबात कर सकते। जरूरी नहीं कि तुसी शायर ही होवो ते राइटर ही होवो, भाई तुसी अपने मन दे हाव भाव आण के 10-15 मिनट विच एक्सप्रेस कर सकते हो। पर तुसी इस तरह है कि मैनू एक मिस कॉल मारनी होवेगी, ते जदों मेरी तुहानू कॉल आ जाए, ते तुसी अगर रेडियो सुन रहे हो ते बंद कर देना रेडियो, ते मेरी कॉल जदों एक्सेप्ट करोगे तुसी ऑन एयर होवोगे जी। ते आज तुहाडा ही इंतजार है, हर वारी दी तरह आओ ते रौनकां लाओ। मैं उदों ही गलबात करांगा भाई जदों तुहाडी कोई कॉल नहीं आ रही होवेगी। मैनू तुहाडा ही इंतजार है, प्रोग्राम ही तुहाडा हुंदा है, ते तुसी आण के जिहड़ियां तुसी कवितावां लिख के अपनियां अलमारियां च धर छड्दे हो उहनां नूं कौण पढ़दा। ते गल इस तरह भाई, आओ अपनी जिहड़ी प्रतिभा तुहाडे विच कुदरत ने पाई है, जिहड़ियां शायरी लिखणी जां राइटर हुंदे ने, इह प्रतिभा कुदरत ने बंदे विच पाई हुंदी है। तुसीं मोटर मकैनिक वांगू जाके किसी कोलों सिख नहीं सकदे कि लिखीदा किदां, नो डायरेक्शन ले सकदे हो जदों तुहानूं लिखणा आ जाए, पर इह कुदरत ने ही आ तुहाडे विच मतलब कि इक आर्ट पाया हुंदा है, इहदे टीके नहीं लगदे ते ना ही इह सिख्या जा सकदा। सो इस करके दोस्तों आ जाओ हुम हमा के, ते मैनूं तुहाडी इंतजार रहेगी। ते जे तुसीं मतलब कि साडे जिस तरह सैटरडे दा प्रोग्राम हुंदा, पहले आवर च मैं गलबात करदा, दूसरे आवर दे विच कोई साडा विद्वान सज्जन आण के गलबात करदा, अगर तुसीं उहदे च गलबात करनी चाहुंदे हो मोस्ट वैलकम, साडे नाल तुसीं अमेरिका जर्मनी इंडिया दे विच जिथे चाहो गलबात कर सकते हो। टू लिसन अस वर्ल्ड वाइड लॉग ऑन www.parvazradio.com। बिल्कुल जी, www.parvazradio.com प्ले स्टोर ते जाके तुसी अपने मोबाइल च ऐप डाउनलोड कर लेनी है, ते साडा लोगो है जी दो स्पीकर येलो रंग दे विच, काला रंग ते येलो रंग है, आप ते तुसी सुनदे हो। साडी पंजां सत्तां दोस्तां सज्जणां मित्रां नाल भी साडी ऐप डाउनलोड करवा के मुलाकात करवाओ, असीं आप जी दे धन्नवादी होवांगे। ते मैं हाँ जी आप दा दोस्त ते होस्ट सुच्चा सिंह बाजवा, स्वीकार करो जी मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, अस्सलाम अलैकुम, नमस्कार, एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड ईवनिंग ऑल द लवली एंड स्वीट पीपल ऑफ दिस प्लैनेट। हक हलाल दी उत्तम जात हुंदी, ते पैन लानता हराम दियां खटियां नू, नफरत कूड़ ते प्यार दी जात उच्ची, पतंगे एवें नहीं सड़दे बत्तियां ते, कली एक ते भवरे लख हुंदे, माली हुंदे नहीं अंबियां खटियां दे, झूठे ते गदार जुल्म दी रखेल हुंदे, सच किते नहीं वेखदा हट्टियां ते, भाई सच किते नहीं वेखदा हट्टियां ते। वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, तुसी सुन रहे हो जी प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट, तुहाडा अपना रेडियो स्टेशन। ते अज है जी डेट 9 अगस्त, अगस्त हो गया, 9 तरीक है अज, ते संडे है जी, हाँ जी, खूबसूरत दिन, कोई लोड़ों ज़्यादा ही खूबसूरत दिन जे, जिस तरह मैं पिछले काफ़ी समय तो दस रहा कि साढ़े यूरोप में तपश वध रही है दिनों दिन,
ਤੇ ਕੱਲ ਤੇ 30 ਗਰਾਡ 31 ਗਰਾਡ ਸੀ, ਅੱਜ 35 ਗਰਾਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਜੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਟਰ ਸੇਕ ਮਾਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਈਏ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਘੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜਰਮਨ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 3:17 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 0049-1714869514 ਭਾਈ 0049-1714-4869514 ਜੀ ਸਾਡਾ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਆਟੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਆ ਐਫਸੀਲੋਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਫਰੀਡਨ ਸਟਰਾਸੇ 106 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਆਓ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਇਹ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਓ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ 'ਤੇ 10% ਲੈਸ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਗਾਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨਪਸੰਦ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਦਰਵੇਸ਼ ਕਲਾਕਾਰ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਬਈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।

मछली शारदा की सुन रहे हैं, क्या बात है। दीप दीप बारे गीत कौर जी थे गीत।

वाह बहुत खूबसूरत गाना, वंडरफुल डांस। ते हीरोइन का नाम पता नहीं की, पता नहीं लगा, लेकिन वंडरफुल डांस सी जी, खूबसूरत गाना। ते मिसेस कपूर जी, उम्मीद है तुसी भी खुश हो गए हो गए, साडिया गुड विशेस थोड़े नाल। लो भाई दोस्तों, भाई अज गामे पहलवान की गलबात करांगे थोड़े नाल। दुनिया दे मन्ने परमन्ने पहलवाना विचों एक पहलवान होया जिदा नां सी गामा पहलवान, जो पहला रुस्तमे हिंद बनिया, बाद विच वर्ल्ड चैंपियन। ते उदों ओदी उम्र दोस्तों हैरानी वाली गल है के सिर्फ 19 साल दी सी। कमाल है भाई, मध्य प्रदेश का एक इलाका सी दत्या, ते जदों अंग्रेजा का राज सी, ते तुहानूं पता ही है ना उदों हिंदुस्तान दे विच राजे महाराजा का दौर सी। इस इलाके का राजा भवानी सिंह, उन्हूं ना पहलवानी का बड़ा शौक सी। वो हर 6 महीने बाद पाए ढंडोरा पिट के उगे पहलवाना नूं सदा देंदा, तकरीबन एशिया के पहलवाना सारिया नूं, आ जिहड़े युबेगिस्तान ते ये वो दिस दैट, सारे कंट्री हिस्सा लैंदे हुंदे आ, उदों नूं सदा दिता जांदा हर 6 महीने बाद। ते पहलवाना दे दंगल करवाउंदा हुंदा सी। ते गल इदां के जिस तरह अज दे सैलीब्रिटीज वांगू, सैलीब्रिटीज की अहीं इज्जत नहीं करते, कोई हॉलीवुड का आ जाए तो मार जी बाजार बंद हो जाता, उत्थे दुनिया ही पहुंच जाएगा। आ सनी आया सी, मतलब कि इलेक्शन लड़न वास्ते, ते सारा शदाई कर छड़िया ही गुरदासपुरियां नूं, सारियां नूं इन्हें। हांजी, अहीं पता नहीं किदां दे लोक आ। चलो वो तो गल ही वखरी सी, वोटा भी उन्हों पाईया, जिता भी दिता। अच्छा गल है, जिस तरह सैलीब्रिटीज की अज अही इज्जत करते हैं ना भाई, उन्हों दिना दे विच सैलीब्रिटीज तो किते उच्चा ते इज्जत माण वाला पहलवाना का दर्जा हुंदा सी। हां जी, भवानी दे राजे कोल जिन्ने भी पहलवान सन, सब तो सिर कढ पहलवान दोस्तों अजीज बख्श सी। अजीज बख्श, ते गल इदां है भाई, अजीज बख्श कश्मीरी मुसलमान सी, ते ओदी जात सी भट्ट। अजीज बख्श ने अपने दौर विच वड्डे वड्डे खब्बी खाना नूं धूल चटाई, ते अजीज बख्श नूं गड्डे दे उत्ते खिलार के, रेहड़ी नहीं हुंदी जिस तरह उदों गड्डे रेहड़ियां ट्रांसपोर्ट दे साधन हुंदे सन, ते अगे पिछे ढोल वज रहे सन, ते सारे शहर विच अजीज बख्श नूं घुमाया गया। ओ ते इज्जत माण वाला पहलवाना दा दर्जा हुंदा सी। हां जी, भवानी दे राजे कोल जिन्ने भी पहलवान सन, सब तो सिर कढ पहलवान दोस्तों अजीज बख्श सी। अजीज बख्श, ते गल इदां है भाई, अजीज बख्श कश्मीरी मुसलमान सी, ते ओदी जात सी भट्ट। अजीज बख्श ने अपने दौर विच वड्डे वड्डे खब्बी खाना नूं धूल चटाई, ते अजीज बख्श नूं गड्डे दे उत्ते खिलार के, रेहड़ी नहीं हुंदी जिस तरह उदों गड्डे रेहड़ियां ट्रांसपोर्ट दे साधन हुंदे सन, ते अगे पिछे ढोल वज रहे सन, ते सारे शहर विच अजीज बख्श नूं घुमाया गया। उस वक्त सड़कां दे